आप मुक्त मोहे तारे, ज्ञान ध्यान किछ कर्म ना जाना, नाहिन निर्मल करनी, साध संगत कै अंचल लाभ हो, भिखम नदी जाए तरनी, ना हों जति सती नहीं पड़या, मूर्ख मुगदा जन्म पया, परणवत नानक तिनकी शरणा, जिन तू नाही विसरया।

परम सम्मान योग चवर शतर दे मालक शब्द गुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हाजूरी अंदर सुभाए मान खोए बैठे गुरमुख प्यारे सत संगी जनों, आप जी ने बड़े प्यार दे नाल हजूर दी इलाही गुरबाणी का रस पिना कीर्तन सरवण कीता है जी। अज उस अकाल पुरख वाहगुरु जी की कृपा दा सदका दशमेश पिता धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जिन्हां ने अपना सब कुछ देश कौम तो कुर्बान कर दिता उस प्यारे गुरुदेव दे पावन पवित्र आगमन पुरब नूं आप जी मना रहे हो। जिवें जिस दिन ए पुरब सी उदन भी हजूर दे जीवन दे कुछ कौतक जो बाला प्रीतम ने बाल अवस्था विच चोज रचाए उन्हां दी विचार आपां कर चुके हैं। आओ साध संगत जी, जिथे गुरु गोबिंद सिंह जी दा आगमन पुरब 25 तरीक नूं आपां मनाया है, उथे 22 दिसंबर नूं मेरे हजूर गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे वड्डे साहिबजादियां दा शहीदी दिवस सी। आओ चमकौर गढ़ी दा साका उस इतिहास नूं गुरु कृपा नाल आपां ने वाचना है। साध संगत आप मेहरामत करो तां जो उस प्यारे सतगुरु दे इस जीवन नूं हजूर दे इस अलोक कारनामे नूं गुरु कलगी वाले दा इह वी इक विचित्री नाटक सी जिहड़ा अजे तक किसी ने खेडिया ना। किन्नी हैरानी पैदा करन वाली इह घटना है। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज आप मेहरामत करो, आप ही अंदर दी एकाग्रता बख्श के अपने इस पावन पवित्र इतिहास दी विचार करा लो। गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी, जदो आपां हजूर दे पावन पवित्र जीवन नूं पढ़ने हां ते उन्हां दी पावन पवित्र बाणी दे आधार ते हजूर ने अपनी बाणी विच जिवें आपां विचित्र नाटक विच ए बचन सरवण कर रहे सां कि मेरे आउण दा प्रयोजन की है, ते साहिब ने इक्को सवैये अंदर इस पूरी घटना नूं अंकित कर दिता ते साहिब ने बचन कीते दशमेश सतगुरु ने कि हम ए काज जगत मोह आए, मैं इस काज लिए संसार तिस जगत ते आया, धर्म हेत गुरदेव पठाए। पठाए दा अर्थ हुंदा भेजा गया। हजूर कह रहे ने मैं कुछ कम करना आया ते उस गुरदेव ने उस अकाल पुरख वाहगुरु ने मैनू इस काज वास्ते इस संसार ते भेजे। हम ए काज जगत मो आए, धर्म हेत गुरदेव पठाए। की काज है साहब? किन्ने जहां तहां ते धर्म चलाए। साहब जी बचन करदे ने आपा सवैया ए सरवण भी कीता है। एक ता पंक्ति ए हुंदी है, जहां तहां ते धर्म चलाए, कुबुद्ध करन ते लोक हटाए। ते इथे बचने जहां तहां ते धर्म बिथारो, दुष्ट दोखियन पकर पिछारो। यही काज तराहम जनमंग, समझ लियो साधु सा मनमंग। कास वास्ते धर्म चलावन, संत उभारन, दुष्ट सबन को मूल उपारन। धर्म नू चलान लई परमेश्वर दी बंदगी करन वालियां नू उभारन वास्ते ते गुरु गोबिंद सिंह कहिंदे हे साधु जनो, एक गल ध्यान नाल इस नू समझ लवो कि धर्म चलावन, संत उभारन, दुष्ट सबन को मूल उपारन। ते जेड़े जालम बिरती वाले लोग ने उन्हां दुष्टां दी मूल दर ते मैं जड़ पटन वास्ते आया।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਕੁਝ ਕੁ ਬਚਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਇਨਸਾਨ ਵਰਤਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਹੜੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪਿਤਾਮਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾਦਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਵੱਡੇ

इतिहास नू पढ़ो, बाबा बुढ़ा जी नू कोल बुलाया, भाई गुरदास नू कोल बुलाया, तीसरे गुरु हरगोबिंद साहब ने। अज जे बाबा बुढ़ा बौली का टक लांदा है, जे रामदास गुरु जी दे सरोवर का टक लांदा है, ते अज गुरु रामदास दा पोता गुरु हरगोबिंद साहब जदों अकाल तख्त बनाण लगा है, ते सब तो पहली इट भी बाबे बुढ़े ने लाई, अकाल बुंगा भी उन्हें सिरजिया। ते लिखदा विद्वान, किसी राज में हाथ लगायो बुढ़ा और गुरदास बनायो, ते जेड़ी इट बाबे बुढ़े दी हाथ दी लगी है प्यारे, उस दियां जड़ां नूं कोई उखेड़ नहीं दे सकदा। बाबा बुढ़ा जी इत्थे टिके रहे, फिर भीड़ चले गए, गुरु हरगोबिंद साहब दे वेले दर्शन करन आउंदे रहे। एक घटना मैं पढ़ी कितों नहीं, एक मैनू निर्मले गुरमुख प्यारे साधु ने सुनाई। वो कहिंदा जिद्दन बाबा बुढ़ा जी दी उम्र 102 साल दे करीब हो गई ना, उस वक्त ना बाबा बुढ़ा जी बीड़ साहब रहन लग पए, ते ऐसा ऐसा तुर के आना। ओदे बचन सन, कहिंदा एक दिन गुरु हरगोबिंद साहब ने कहा सी, बाबा जी तुसी बीड़ साहब तो ना आया करो, शरीर नू खेचल ना दिओ, मैं तुहाडे दर्शन करन लई खुद पहुंचा करांगा, तुहाडे कोल पहुंचांगा। उस महापुरुष ने मैनू बचन सुनाए, कहन लगे बेटा बाबा बुढ़ा जी ना मन्ने, कहन लगे दातिया सिख दा काम है गुरु दे दर ते चल के आउणा, मैं गुरु नानक दे दर ते अंतले समय तक आउंदा रहां, तुसी किरपा करो। साहब ने एक गल की, बाबा जी जे तुसी आउणा ही चाहुंदे हो ना, तुर के ना आया करो, पालकी लै जाओ, तुसी पालकी विच बैठ के आया करो। बाबा जी कहन लगे नहीं, तेरे दर ते मैं तुर के आउणा, सतगुरु ने पालकी दिती। वह महापुरुष की शब्दावली सी, बाबा बुढ़ा जी पालकी विच बैठ के आए, सिखा ने पालकी चुकी, जदों रामसर दे किनारे आए ना, ते गुरु हरगोबिंद साहब अगों लैन चले गए, पालकी बांधे, बाबा बुढ़ा जी ने पालकी सिखा ने चुकी, गुरु हरगोबिंद साहब ने इशारा करके कहा, एक नू तू पिछा हो जा, बाबे दी पालकी नू मोढ़ा मेनू ला लैन दे। सतगुरु ने जदों मोढ़ा लाया, ते पालकी विचों आवाज आई, एक कदम भी अगे ना तुरियो ने ते मैं पालकी विचों छाल मारांगा। सतगुरु ने थले पालकी रखी, बाबे चरना ते देख के क्या दाता, ऐसे करके ते मैं पालकी लिजांदा नहीं। सतगुरु ने एक बचन कीता, कह लगे बुढ़िया हे बाबा तू पालकी विच है, कपड़े नल बिलकुल पालकी बांधे, तुहानू किवें पता लग गया मैं तेरी पालकी नू मोढ़ा ला दिता, जेड़ी गल उहने कही उहदे अर्थ समझने। कहन लगे सतगुरु मैनू किवें पता लगा, असलियत यही जदों तुसी अकाल तख्त अकाल बुंगे तो तुरे सो, मैनू उदों ही पता लग गया सी बुढ़िया तेरा गुरु तेरे वल आउंदा पिया, क्योंकि जिद्दन दा गुरु नानक दे चरणा नाल जुड़िया वा, उदन दी सुरत गुरु नानक दे चरणा तो बिना किते गई हुई। जदों गुरु के चरण तुरन ते बाबे नू पता ना लगे, साध संगत बाबा बुढ़ा जी कोई दिन टिके, सतगुरु ग्वालियर दे किले विच कैद कर दिते जहांगीर ने। कुछ कहिंदे ने चली आ कटन गए, गल नहीं, पूरा योजनाबद्ध तरीका सी ग्वालियर दे किले विच कैद करना। जदों संगत बेबल हो गई, बाबा बुढ़ा जी फिर बीड़ साहब तो आए। जदों संगत बेबल हुंदी सी बाबा अगवाई करदे, अज बाबे बुढ़े की उम्र 115 साल के करीब हो चुकी सी, 15-16 साल के वडेरा शरीर अकाल बुंगे ते आए, संगत बेबल, गुरु साहब अंदर ने, ते बाबा जी ने एक गल कही, साध संगत निराश मत हो, गुरु साडे अंग संगे तुसी शब्द पढ़ो, आपां ग्वालियर तक गुरु हरगोबिंद साहब दे कोल जावांगे। जिहड़ा सी कहिंदे चौंकियां झंडे अरदास विच इहदी कोई रमज है समझना इस गल नूं, बाबे बुढ़े ने हाथ विच पकड़ी मिसाल, भाई गुरदास नूं नाल लिया, नाल नाल लै लिया, रातों रात पिंडां विच गए, जिथे जिथे संगत सी बाबे दे अदबली लोक बाहर आए, ते बाबे बुढ़े ने एक गल कहनी, घबराओ ना गुरु अंग संगे, चलो आपां ग्वालियर दे किले गुरु दे दीदार करिए। 115 साल दा बजुर्ग बापू हाथ विच डंगोरी पकड़ के ग्वालियर पहुंच गए, ग्वालियर दे किले दी कीती परिक्रमा, ते जदों दरवाजे वाले पासे बाबा बुढ़ा आया, ते कहिंदे ने दरवाजे विच नमस्कार कीती, किले दियां कंधां नूं चुमिया, ते हाकम ने पुछिया बाबा ए क्यों, कहन लगा मेरा प्रीतम इत्थे बैठा है,
किन्ने दिन हो गए ने दर्शन कीतिया, जिस किले विच ओवे मैं उस किले दियां दीवारां नूं चुम के अपने गुरु नूं नमस्कार पिया करना। पर करमा करी गए, गुरु हरगोबिंद साहब बाहर आए, बाबा बुढ़ा जी बाहर निकले, बाहर मिले, नमस्कार कीती। जदों सतगुरु अमृतसर पहुंचे ते बाबा बुढ़ा फिर शब्द पढ़दा जोटी विच अगे मिलिया, जिन्हों कहिंदे ने चौंकी कढ़ी। बाबे बुढ़े ने दीप माला करके चौंकी कढ़ी ते उदन गुरु हरगोबिंद साहब ने भरी हुई संगत विच कहा सी, बाबा तेरी चौंकी जुगो जुग अटल होवेगी, जदों भी तेरी चौंकी निकलेगी कोई भावना वाला सिख तेरी चौंकी भी शामिल होवे, रहिंदी दुनिया तक तेरी चौंकी विच मैं खुद शामिल होया करां। अज भी हरिमंदर साहब जाओ, शाम नूं हुंदा कीर्तन, एक चौंकी आउंदी है बाबे बुढ़े दी, बजुर्गां दे हथ विच गुटके हुंदे ने, शब्द पढ़दे ने ज्योति विच, जदों चौंकी दरबार साहब दे सामने आउंदी है अंदर कीर्तन दी समाप्ति हुंदी है, बाबे बुढ़े दी चौंकी दे अद भी संगत उठ के खड़ी हो जांदी। इसे करके अज तक कहने गुरु तेरिया चौंकियां झंडे बूंगे जुगो जुगा टल, कीर्तन की चौंकी भी है, बाबे बुढ़े की कीर्तन जड़ी मैं चौंकी शुरू की अज भी निकलती है। अज वह समा आ गया जदों संसार तो सब ने चले जाने, एक ओ ने जेड़े उम्र भो के अफसोस न जाते ने, एक ओ जेड़े उम्र भो के सुरखरू होके जाते ने। बाबा बुढ़ा जी रमदास चले ने ते गुरु हरगोबिंद साहब नूं एक बचन कर गए ने, सतगुरु इउं लगदा है जिवें गुरु नानक जी दी सद पई आउंदी है, आ सिर्फ एक भरम है तन, मैं इस ठीकरे नूं भन के गुरु नानक कोल जाणा है, तुसीं कृपा करियो इस बुढ़े नूं सारी जिंदगी नवाजई, दात्या जदों अंतला समा होवे सवास अंतला निकले ते तुसीं मेरे सामने हो। सतगुरु ने बड़े प्यार नाल कहा, बाबा जी क्यों नहीं। बाबा बुढ़ा जी रमदास चले गए। दिन आ गया 16 अक्तूबर ते 1631 दा, बाबे बुढ़े कुल संगत बैठी है ते सवाल कर दिए, बाबा गुरु नानक दी कृपा किवें मिले। ते बाबा बुढ़ा आवाज दे के कहिंदा, शब्द पढ़ो, साखी वाले दे बचन ने शब्द पढ़ो, बंदगी करो, खीला करो, उद्यम करो, सब कुछ करो, पर टेक रखो दी मेर दे, शब्द बड़े सुन ओदी कृपा दी टेक रखो। शाम दे वक्त बाबे ने भाई रमदास एक सिख सी उन्हूं आवाज दे के क्या, प्यारिया गुरु हरगोबिंद साहब नूं संदेश दे दई, बुढ़ा तेनूं याद प्या करदा है। संदेश मिलिया, गुरु हरगोबिंद साहब जी घोड़े ते चढ़ के रमदास पहुंचे ते कहिंदे ने इतिहासकार, बाबा बुढ़ा जी तख्त ते बैठे ने ते गुरु हरगोबिंद साहब ने जाके बाबे बुढ़े दे घुट के चरण पकड़ लए। बाबा बुढ़ा जी उठ खलोते, कहन लगे, सतगुरु बख्श दी इस बुढ़े नूं, शाम दे वक्त जेड़ियां गल्लां होईयां ने विद्वाना ने सांभ के रखियां ने। कहिंदे ने गुरु हरगोबिंद साहब कोल बह गए, कहन लगे, बाबा 113 साल गुरु नानक दे घर रहा है, कुछ सुना बातां गुरु नानक दे घर दियां। बाबे बुढ़े ने गुरु नानक दा नां सुन लिया, अखां विच पानी भर लिया। उस वक्त गुरु हरगोबिंद साहब जी नूं बाबे बुढ़े ने अर्ज कीती, कहन लगा, सतगुरु मैं खिन खिन भुलिया वां, 113 साल तेरे घर विच चाकर रहा वां, इस बुढ़े ने पता नहीं किन्नियां कु भुल्लां कीतियां होणगियां, अज जान लग्या सिर्फ इन्ना कु कह दे बुढ़िया तेनू बख्श दिता। प्यारे चेते रखियो, जिन्ना कृपा लई ओ अंतले दिन तक भी मेहर मंगदे ने, अज सतगुरु इन्नी गल तुरदियां कह दे बुढ़िया तेनू बख्श दिता, ते मेरे गुरु हरगोबिंद साहब ने नीर भर के क्या, कहन लगे, बाबा मैं मूर्ख की केतक बात है, कोट पराधी तरिया रे, गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया से फिर गर्भास ना परिया रे, जिन्ना सुनिया जिन्ना वेख्या ओ बख्शे गए, तेनू ता कई बारी गुरु नानक ने गलवकड़ी विच लिया, तू क्यों नहीं बख्शिया गया। बाबा बुढ़ा जी ने अमृत वेले इशनान किया, गुरु हरगोबिंद साहब नू कोल बिठाया, कहन लगे, दाता जी मैं जपजी साहब का पाठ करांगा, तुसी सुनियो। बाबे ने सुरीली आवाज विच पाठ शुरू किया, अज ओ कुतबी सितारा अपने पुत्र नू कोल बुलाया, भाई भाने नू ते गुरु हरगोबिंद साहब के चरणा विच मत्था टिका के कहन लगा, दाता ए तेरे ही
ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਨਵਾਜਿਆ, ਮੇਰੀ ਅੰਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਈ। ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀ ਜਾਇ ਦੱਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਕੇਵਲ ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਚੱਲੇਗੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣੀ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਪੌੜੀ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਗਿਆ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੌੜੀਆਂ ਕੀ ਲੰਘਿਆ, ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਕਰ ਕਰ ਵੇਖਿਆ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਫਿਰ ਕਮਾਈ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਜੱਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰੇ ਸੁਨਿਆਰ, ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਅੰਤਲੀ ਪੌੜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ, ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਘਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਪਰਤ ਕੇ ਮੱਥਾ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਦਾ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਤਨ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਚਿਹਰਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖਦਾ ਪਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਲਿਖਦਾ, ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਂ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਟਿਕ ਜਾਇਆ ਜੇ। ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਅਰਥੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਲੱਗਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਭਾਨਾ, ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਅਰਥੀ ਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ, ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਜੇਠਾ। ਚਾਰ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਅਰਥੀ ਚੁੱਕੀ ਦੇਖੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਅਰਥੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇਠਿਆ ਬਾਬੇ ਨੇ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਤਾਂ ਪਾਲਕੀ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਨਹੀਂ ਲਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਅਰਥੀ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਗਏ। ਕਹਿ ਲੱਗੇ, ਚੰਦਨ ਦੀ ਚਿਖਾ ਚੁਣੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਦੇਹ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ, ਅੰਤਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਕੱਪੜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਨੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਪਿਆ ਚਿਖਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੀਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਮਾਂ ਗੰਗਾ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਵੇਂ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਦੋ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਵਾਈਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ, ਕਿਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬਾ ਗਵਾਲੀਅਰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਤੇ ਚਿਖਾ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਦਾ, ਚਿਖਾ ਉੱਪਰ ਜਬ ਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੁੱਢੇ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਬੁੱਢੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਰਥੀ ਚਿਖਾ ਤੇ ਰੱਖੀ, ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਨੈਣ ਤੇ ਚੱਲਿਓ ਨੀਰ ਅਸਨੇ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਨੀਰ ਦੀ ਧਾਰਾ

ओहम पातिक बिना सह गुर अमरदास परसिय सिद्ध साधक आशा सह गुर अमरदास परसिय ध्यान लइया पौ मुकह गुर अमरदास परसिय अपौ लभै गौ चुकै एक बिन दुगण जौ तौ रहै जा सुमंत्र मानवै लहै जाल पाप दार्थ इतड़े गुर अमरदास डिठ मिले कन हर बूंद बसोरू मावल कुसुम बसंत गणंत नयाव रव सस किरण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावै रुद्र त्यान ज्ञान सतगुर कै कब जन पल उन्हें सो गावै

सम्मान योग चवर तखत दे मालक परमेश्वर दा खिरदा स्वरूप सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाए मान होए बैठे गुरु सवारे सतसंगी जनों वडभागी हो इलाही गुरबाणी दे कीर्तन नाल सतगुरु नानक देव बाबा जी महाराज उन्हां दी बख्शिश कृपालता लै रहे सी। आओ जितने को सोज धन गुरु ग्रंथ साहिब जी मेहर करके बख्शनगे गुरु बाबा जी दे पवित्र जीवन और गुरबाणी दी विचार आरंभ करिए। विचार आरंभन तो पहला कृपा करके एकाग्रता बख्शो, बच्चियां नूं भी चुप करा के कृपा करके एकाग्रता दा दान बख्शिया जे। गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी ने शब्द सरवण किया है, बाबा मन मतवारो नाम रस पीवै, सहज रंग रच रहया, अहमिस बनी प्रेम लिव लागी, शब्द अनाहद गया। ए शब्द दी रहाओ दी तुक सी। पहलियां पंक्तियां सन, गुड़ कर ज्ञान ध्यान कर धावै, कर करनी कस पाइए, पाठी भवन प्रेम का पोचा, इत रस अम्यो चुआइए। ते इस शब्द दे अखीर दी तुक सी कि गुरु नानक साहब एक जोगी नूं संबोधन कर रहे हैं। कहो नानक सुन भर थर जोगी, इहदा मतलब है शब्द किसे जोगी नूं संबोधन करके उच्चारण किया, पर चेते रखना यह शब्द केवल उस समय तक उस जोगी दे जीवन तक सीमित नहीं सी। यह शब्द अज भी गुरु के सिखा एक चेतावनी देता है ते नाम रस नाल जुड़न की प्रेरणा दे रहा है। शब्द असा सुने बाबा नानक जी नूं जोगी मिले है, इन्हें गल कीती है लिव दी, गल कीती है अनहद शब्द दी। ते जोगियां दे मत मुताबक उन्होंने प्याला भर के नशे का पेश किया, शराब का पेश किया। ते बाबा जी पुछदे ने ए की, कहन लगे एक वारी पी लईए ते परत के दिन चढ़े तक एदा नशा उतरदा नहीं, ते इन्नी टेक के समाधि लाई दिए कि शरीर नूं थकावट भी महसूस नहीं हुंदी। ते बाबा जी कहन लगे भलियो ए प्यार किवें कीता जे, ध्यान देना। कह लगे भांडे विच पानी पाया सी, पानी पा के विच गुड़ पाया, गुड़ दे विच किक्कर दे छक पाए ने, अमवे दे फुल पाए ने। पहला एक कच्ची

जाए ते कह लगे मैं उस नाम रस दे प्याले नू पी चुका हां ते एहो जा आनंद अंदर बन गया है कि चेते रखो ओदा नशा ओदा सरूर ओदा रस कदी भी उतरदा नहीं। ते जोगियां ने पूछा ए रस किवें तैयार हुंदा है ते बाबा जी कह लगे जोगियो गुड़ कर ज्ञान परमेश्वर दे बख्शे हुए ज्ञान नू गुड़ बनाया ध्यान कर पावे ओदे नाम विच ध्यान जोड़ना मैं इनू अमवे दे फुल बनाया कर करनी कस पाई है ते उच्चे आचरण नू किकर दे सक बना दिता है पाठी भवन आ शरीर नू पठी बना दिता है इस मोह दी मोह नू मैं साड़न तुरिया वा पाठी भवन तुसी मिट्टी का पोचा देंदे हो प्रेम का पोचा ते एदे विचो शराब नहीं एक रस अमेओ चवल गया एदे विचो अमृत दीआं बूंदा डिगदीआं एक रस अमेओ चवाई है। कह लगे फिर बाबा हे जोगी मन मत वारो मन मस्त हो गया नाम रस पीवे सहज रंग रच रहा एमस बनी प्रेम निव लागी शब्द अनाहत गया एमस का अर्थ हुंदा दिन ते रात एवो जा सरूर ओ विचार है कि मेरे अपने अंदर ही ओ शब्द सुनाई दे रहे ओ शब्द आप जी ने सरवण किया ते जे आपां कह दईए भी ए कले जोगी वास्ते सी ते ध्यान रखो गुरु के सिखो बाबा नानक जी ने इस शब्द विच कले जोगी नू नहीं हर प्राणी मातर नू कह जिस नशे पिछे तू जीवन बर्बाद कर रहे है इस नशे ने ना लोक सवार नहीं ना परलोक सवार नहीं। ते कई बारी कोई सज्जन कहिंदे ने कि गुरु ग्रंथ साहिब विच शराब दे मुतल्लक कुछ बचन कीते ने। हां बाबा अमरदास जी एक बचन करदे ने कहिंदे ने मानस भरिया आणिया मानस भरिया आए जित पीता मत दूर होए बरल पवै विच आए अपना पराया ना पछाणी खसमो धक्के खाए जिदे तीन नाल अपने पराए दी पछाण नहीं ओहो जे बंदे नू तां रब दी दरगाह विचों भी धक्के पैंदे। हुण गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी भगत रविदास जी दा इक शब्द हुंदा नागर जना मेरी जात बख्यात चमारन उस शब्द विच इक तोके कहिंदे दुनिया ने सब तो पवित्र गंगा नदी नू मन्निया हिंदुस्तान दे लोगां नू पर भगत रविदास कहन लगे जेकर गंगा दियां लहरां दे पानी दी भी शराब कोई कढ लै ते रब दी बंदगी करन वाला कदी ओहदे वल झाकदा भी। उहनां दा बचन सुरसरी सललकृत बाणी रे कि जेकर सुरसरी दा अर्थ है तू गंगा दियां लहरां दी शराब बना लै सलल दा अर्थ लहर सुरसरी सललकृत बाणी रे पर नाल कह दिता संत जन करत नहीं पावन सतगुरु गुरु साहिब जी ने ओह रस दिता जेड़ा रस नाम दा कदी उतरना नहीं। खैर गुरु नानक साहिब महाराज जी दा पवित्र इतिहास आपां कल विचार कीती सी गुरु नानक बाबा जी ने सज्जन ठग तो सज्जन भाई बना दिता है अगे लोकां नू ठगदा सी अज एहो जा सज्जन बना दिता नाम दा व्यापारी बन गया। गुरु नानक साहिब महाराज सज्जन तो बाद हर द्वार दी धरती ते पहुंचे ने इत्थे मेरे दाता जी ने कुछ एहो जा कौतक वरताए जेड़ी कई मुद्दतां तो उन्हां दी मनौत सी एक परंपरा बनी हुंदी सी ते पांडे ने मर्यादा बनाई सी ते गुरु नानक दे उस दलील ते नाम दी बरकत सामने कोई खलो ना सकिया। हर द्वार पहुंचे ने अजे सूरज दी टिक्की निकल रही है ते लोग गंगा विच इशनान तय करदे ओ लोग तन नू तां धो रहे ने पर मन उन्हां दा दसी पासी धामदा पिया तन धुपदा पिया पर मन धामदा है मन धुपदा नहीं मैं बेनती की धामदा दर से दौड़दा पे पिंडे ते पानी पै रहा पर मन ते उस पानी का असर नहीं ते कुछ कूने पानी दियां बुक्कां भरिया ने ते सूरज वल पानी पै सकदे ने ते बाबा नानक जी कहिंदे ने मरदानिया तू खलो किनारे ते आ देख पानी पै सिंजदे ने चढ़दे नू आपां वी अपने घर का कोई सोच

साहब ने निर्णय किया, कहन लगे इंसान मां जन्म दे सकती है, मां अपने तन दा अमृत दुध तेनू दे सकती है, जिस दिन मौत आई मां भी केवल घर दी ड्यूटी तक रोंदिया जाएगी, चेते रखी मरिया कोया नू मां भी गोद विच नहीं समा सकती। जिन्हू तू जीवन साथी कहने ते मैं कई बार बेनती करना, आपने सुनिया होने के जिस दिन आनंद कारज हुंदा है, कीर्तनीय गुरसिख आनंद कारज करान, कोई प्रचारक बोले एक शब्द सी कहने हैं कि आज तो बाद तुसी एक दूजे दे जीवन साथी हो, मैं कहना असल विच आनंद कारज वाले दिन की सानू ए गल समझा दित्ती जांदी है कि तुसी एक दूजे दे जीवन साथी हो, तुसी मरन साथी नहीं। तुसी जींदे दे एक दूजे दा साथ दे सकदे हो, मरन साथी नहीं, क्योंकि कपड़ रूप जो है इत्थे छड़ के जाना है। जब लग तेल दीवे मुख बाती, तब सूझे सब कोई, तेल जले बाती ठहरानी, सुना मंदर कोई, रे बौरे तो गरी ना रख है कोई, तू राम नाम जप सोई, देवरी बैठी माता रोवे खटिया लेके भाई। पर हां खटिया दर ते मंजी चुक के चले गए, असी भरावां नूं बाहवां कहने हैं। अज तीकरा साडा सुभाव, मैं सिर्फ बेनती करनी चाहना, कत्तक दे मकीने विच जेड़े कर्म करने, कर्म तेरे नाल निभने ने, आ संसार दे लोक परछावे नाल निभने नहीं। देखो भरा बाहवां ने, ते जिस वेले आदमी दी अर्थी तैयार हुंदी है, ते सब तो पहला जिन्हां नूं असी बाहवां कहने आ, ए बाहवां ही तां अर्थी नूं चुक के अपने मोढ़ियां ते रख दियां। कदी किसे दुश्मन ने अर्थी नहीं चुकी, भरा ही तां अर्थी चुकदे ने। साहिब कृपालू जी ने अमृत बाणी विच कहा है, कहन लगे कि तिना प्यारिया भाइया अगे दिता बन, वेखो बंदा चलिया चौ जनिया दे कन। अर्ज मैं कर रहा, जब लग तेल दीवे मुख बाती, तुसी बाणी नू समझन वाले हो। मैं यतन करना हुना, क्योंकि असी गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी समझन आए हां, ना के केवल कन रस जां केवल चमक दमक वालियां नाटक चेटक वालियां कहानियां। जे गुरु कोल बैठे खां ते गुरु दा शब्द समझिए, क्योंकि शब्द ने ही तां साडा पार उतारा करना है। साहिब कृपालू दे बचन सन कि जब लग तेल दीवे मुख बाती, तब सूझे सब कोई, तेल जले बाती ठहरानी, सुना मंदर खोई, रे बोरे तो गरी ना राखे कोई, तू राम नाम जब सोई, देवरी बैठी माता रोवे खटिया लै गए भाई, लट छटकाए केस खलार के, तेरे यहां रोवे औरत रोंदी पई है, पर अंदर वाला प्यारे खंस अकेला जाए, जान वाला इकला जा रहे हैं। हजूर ने बचन कीते, कत्तक कर्म कमावने सब तो माड़ा कर्म की है, जिदा फल सानू भोगना पैंदा है। फिर उस पौड़ी दे अर्थ मैं करदा जावां कि कपड़ रूप सुहावना छड़ दुनिया अंदर जावना, मंदा चंगा अपना आपे ही कीता पावना, कत्तक कर्म कमावने दोष ना कहूं, जो मंदा कर रहे हैं चाहे चंगा कर रहे हैं, अपने कीते ने तू आप ही पाना है। मंदा चंगा अपना आपे ही कीता पावना, हुक्म किए मन पावदे। इस धरती विच मन मर्जी दे हुक्म चलाए ते की परमात्मा दे घर विच इंसान दा हुक्म चल सकदा, सवाल ही नहीं पैदा हुंदा। मेरे धन गुरु नानक साहिब बाबा जी ने ना रोज सानू जपजी साहिब दी बाणी विच एक ऐसी पौड़ी बख्शीश वजो दित्ती कि जिन्हू आपां टेक के कदी पढ़ीए। ते गुरमुखो जदो आपां गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी पढ़ने हां, ते मैं अर्ज करना हुन्ना बाणी नू इस तरह पढ़ो कि जिवें पिता दी गोदी विच बैठ के एक पुत्तर पिता नाल गल्लां करदा होवे। बाणी नू बद्दा चट्टी नहीं, बाणी तां मेरे गुरु नानक साहिब दा हिरदा है, शब्द तां मेरे गुरु नानक साहिब दा आपा है। जिस बंदे ने गुरु नानक साहिब दे हिरदे दा आनंद मानना, उन्हां दे गलवकड़ी दा प्यार मानना, ओ अपने अंदर नू टिका के गुरु की बाणी दे शब्द दा अभ्यास करे, बाणी नू टेक के पढ़े, ते ओदे अंदर नू आनंद आवेगा। हजूर ने देखो सानू अमृत वेले जपजी साहिब दी बाणी बख्शीश वजो दित्ती, नित नेम दी पहली बाणी है, ओदे विच इक पौड़ी रही दस दिता कि अपने अंदर दे भरम नू कढ लै, इत्थे मन मर्जी दे हुक्म चलणगे, पर प्यारे साईं दे घर विच नहीं। जे दाता जी
ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਧਨ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ

जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की, हर नाखश फारे कर आज, फुन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभु जी, छीनत वस्त्र दीन बहु साज, सुदामा अपदा ते राखिया, गणका पड़त पूरे ते काज, श्री सतगुर सो प्रसन्न कल युग होए, राखो दास पाठ की लाज।

लोभ मोह वस करण शरण जाचक प्रतपालन आत्म रस संग रहन कहन अमृत कल ढालन सतगुरु सत सतगुरु तिलक सत लागे सो पै तरे गुरराज गुर जगत फिरन सिंह अंगरो राज जोग लहना करे अमे दिष्ट शुभ करे हरे अग पाप सकल मल काम क्रोध अर लोभ मोह वस करे सबे बल सदा सुख मन वसे दुख संसारे खोवे गुर नव निद दरियाओ जन्म हम कालख धोवे सुकह टल गुर सेविए एहन सहज सुभाए दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाए।

अब तो 40 मील दूरी ते है, ते पंडरपुर गालबन 300 मील पै जांदा है। इन्हां दोवां थां ते मैं गया, फिर यह आया मंदिर भी देखा है, औंडा दे चे मूर्तियां दा मुंह एक पासे ते मंदिर दा दरवाजा दूजे पासे, अज भी है। हुणे जद पिछले दिन कोई 2 महीने पहले दास हजूर साहब गया सी, फिर भी मैं औंडा तो लंघदा होया गया। कार ते जा रहे सी तो औंडा 1 मील थले जो है हाईवे तो थले एक पासे कस्बा है, मैं कहा चलो वेख दे जांदे आं। बाहर ही उसका मंदिर बनाया, जिमें धक्के मार के मंदिर चो बाहर कढ़िया सी ना, ते हुण भी उसका छोटा जिहा मंदिर नामदेव का बाहर ही बनाया है। ऐ नामदेव का थड़ा है जी, इत्थे बैठा सी। ते पंडरपुर ते मैं निराला सिलसिला देखिया, अंदर बिठल का मंदिर वेख्या, तरह तरह के देवी देवत्या दी मूर्तियां। ते जद मैं बाहर निकलन लगा ना दूजे दरवाजे दे राही, ते दूजे दरवाजे दे च पौड़ियां दे ते थाल दे च एक मूर्ति सी, ते पुजारी आवाज लाण संत नामदेव नूं मत्था टेक दे जाओ, संत नामदेव नूं मत्था टेक दे जाओ। ते मैं कहा पुजारी जी पहले मैनूं गल दसो, सारियां दी मूर्तियां ते मंदिर दे अंदर ने, ते नामदेव दी मूर्ति इत्थे जुतियां च रखी हुई, इत्थे ते लोकी जुतियां उतार के अंदर जांदे ने बाहर निकलदे ने, ते पौड़ियां दे च आखन लगे ये शूद्र है ना, इनकी मूर्ति अंदर स्थापन नहीं हो सकती, शूद्र है। संत ने मत्था भी टेको पैसे भी चढ़ाओ, पर है ना शूद्र अंदर नहीं बढ़न देना। उत्थे बोल मैं अपनी डायरी च नोट किए, मैं कहा नाम दो तेन उदो धक्के मार के मंदिर चो बाहर कढ़िया से, अज तेरी मूर्ति धक्के मार के बाहर कढ़िया, ये तेरी मूर्ति भी अंदर वाड़न नू तैयार नहीं, ये तेरी मूर्ति भी अंदर देन नू जो है थां देन नू तैयार नहीं, अज तक ये निजाम मौजूद है, मूर्ति उसकी अंदर नहीं स्थापन करनी, बाहर बैठे पौड़ियां ते बैठे। ते क्षमा करने नामदेव जैसे ब्रह्म ज्ञानी नाल इतनी ईरखा, कबीर जैसे संत नाल इतना द्रोह, महात्मा बुद्ध जैसे महान पैगंबरी पुरुष नाल इतनी दुश्मनी, तो क्षमा करने जद पैगंबरां ते पैगंबर महान गुरु नानक देव जी महाराज लंबा और वड्डा आदर्श लेके आए, तो उतनी वड्डी दुश्मनी सामने आनी सी, कुदरती गल है। क्योंकि गुरु नानक के बनाए हुए सिद्धांत दे च ब्राह्मणी मत वास्ते कोई थां नहीं, जगह नहीं है। और 9 साल तो गुरु नानक ने यह बगावत शुरू की थी, मैं नहीं पहनना जनेऊ, गल खत्म, मैं परंपरावादी नहीं हां और मैं वेद भी नहीं पढ़ना। दयानंद ने कह दिता गुरु नानक कोई वेद पाठी थोड़ी से, गुरु नानक को कोई संस्कृत थोड़ी आती थी, उन्होंने निर्भय की जगह पर निर्भव लिखा है। पर उन्होंने कौन दसे गुरु नानक संस्कृत पढ़ाण आया, इस दे टीचर से कोई संस्कृत पढ़ाण आया, नहीं गुरु नानक सच पढ़ाण आया, सच की है। ये भाषा से अलग अलग भांडे ने, चाहे वो अरबी है, फारसी है, संस्कृत है, पंजाबी है, सिंधी है, बंगला है, मराठी है, ये तो भांडे ने। देखना तो यह भांडे भोजन की है, ये तो भांडे ने, भोजन छकन लई भांडे चाहिए ने। ये अरबी एक भांडा है, संस्कृत एक भांडा है, इंग्लिश एक भांडा है, पंजाबी एक भांडा है, और इसी तरीके नाले बर्तन है बंगाली, सिंधी, मराठी। सवाल तो यह है भांडे च है कि भांडा सोने का होवे ते भांडे दे च मिट्टी होवे ते भुख मिटेगी मिट्टी खा के? ते जे भांडा अगर मिट्टी का होवे ते ओदे 36 प्रकार का भोजन परोसया होया होवे, खिमा करने छक के तृप्ति मिलेगी। और अवर तो मैं मनता ही नहीं कि कोई भांडा मिट्टी का है, सारे भांडे सोने के, चाहे वह संस्कृत है तो चाहे फारसी है, चाहे अरबी है तो चाहे पंजाबी है, चाहे उर्दू है तो चाहे बंगला है, चाहे मराठी है, ये सब भांडे सोने के ने। पर भांडे की महानता सोने करके नहीं, भांडे की महानता होगी भांडे च है कि अगर भांडिया पखंड है, भांडिया झूठ पिया, भांडिया च वितकरे पे ने, भांडिया च दुश्मनी पई है, इन्हों भांडिया की करिए छक के क्या तृप्ति मिलेगी? वैर विरोध पे हो, वरण वंड पई हो, और तरह तरह के तकसीम करन दे तौर तरीके इन्हों भांडिया पे होने, इन्हों भांडिया की करिए? सानू ते वह भांडा चाहिए है जेद ये भोजन पे हो, सभ्य सांझी वाल सदायन तू किसे न दिसे बाहरा जी, ये खुराक है, ये भोजन है जिदे छकते हैं बंदा तृप्त हो जाता है, जिदे छकते हैं बंदा महान हो जाता है। गल कि जा पहुंची, समा हो गया,
صاحب گرو امر

0: ना योगी रह जाए इथे है तो मैनू कह देना जितने मूर्ख इथे ने शायद बाकी प्रांत च ने कबर पूजना मड़िया पूजना पूरन प्रेम प्रतीत सजे व्रत गोड़ मड़ी मठ भूल न मने मेरा सिख भूल के भी ना मने मड़ी विच संत है तो फिर संत मर गया संत ते अपने घर जाता संत मोए क्या रोइए जो अपने ग्रह जाए रोवो साकत बापरे जो हाटे हाड बिकाए कबरों विच ओ हुंदे ने मड़ियों च ओ गए जो मर गए ने अजे भी इत्थे ही भटकते पए ने जन्म लैन कि जो अपने घर चले गए अपने टिकाने ते पहुंच गए वह कबरां च थोड़ी हुंदे ने ते जिहड़े हैनी कबरां विच अजे हैनी इत्थे उन्हां नूं पूजा करन दी की लोड़ है जीवदिया जी जिसकी सुरत परमात्मा नाल जुड़ी हुई है वह पूजनीक है कि जीवदिया जी भी जो मुरदे की तरह सी तो फिर उसकी मड़ी बन गई तो उसे पूजी जाते ये एक बहुत वड्डे पद्धर की अग्ञानता है महाराज इतने कहते हैं जितना हार सिंगार संवार तन संवार शिंगार और जितना बाल का अडंबर है ये सब इस तरह है जिमें मुरदे का शिंगार हो जिमें मुरदा शिंगार है जी हाँ जी
1: रहाल ताए ताए कृपन श्रम की नू एकत्र करी है माया
0: माया भौती एकत्रता कृपन होए बिना नहीं हो सकती बहुत चोटी का धनाद है तो कृपन होवेगा शोम होवेगा फराग दिल बंदे कोल बहुता धन नहीं हो सकता शायद दसवन तो भी वद कड़े हो ते अपने सुख से भी ज्यादा खर्च करे ज्यादा खर्च करे किरपन ना अपने सुख से खर्च करता ना परिवार दियां लोड़ां पूरियां करता सिर्फ धन दे अंबार लांदा है क्योंकि धन भगवान ते धन लई मेहनत बड़ी करता मुशक्कत बड़ी करता धन वरतण लई नहीं धन जमा करन लई ऐसा शौम फिर दसवंध नहीं कट सकता फराग दिल नहीं है। मैं एक दिन प्रार्थना पढ़ रहा से शेख साधी की कहते ने प्रार्थना में खुदा प्रगट होया ऐसा शेख साधी लिख देने ते खुदा ने मैनू आख्या मैं कुछ देवा वो तेरी लोड़ ना हो तो इंज कर तू आप ही मंगले तो मैं तेनों दे दिया पता है शेख साधी ने की चोट की है रब ते भी चोट की है कहिंदा रब्बा भगतां नूं तेरे सुभा का पता है संसारी जो कुछ मंगते ने तू दे देना है भगत तड़प तड़प के भी मंगते ने तू देंदा देंदा लंबी चौड़ी हकायत हकायत कहते हैं कहानी नो तो हकायत दे लिखता है रब ने यह आख्या फकीरा इल्जाम ते बाद मेरे करी तू दोषी ते मैनू बाद दे ठहरावी जब तू मंगे ते मैं देवा ना तू मंगया नहीं ते पहले ही मेरे ते इल्जाम ला दिता है जो फकीर मंगते ने तू देंदा नहीं ते जो दुनियादार मंगते ने तू दे देना झोलियां भर देंगा जा जा फिर आप ही कहता अगे फकीर दुनियादारा दियां झोलियां भर जांदियां ने वो तेरा खेड़ा छड़ देंदे ने ते इन्हां वस्तुआं नाल फकीर तेरा खेड़ा छड़ दे ने शायद तेनू फकीरां दी असलियत दा पता है फिर कहीं तू फकीर नहीं देंदा फकीर जो कुछ मंगते ने नहीं देंदा तो खुदा ने आख्या लंबी चौड़ी गल छड़ हुण तू मंग ते मैं तेनू देन लगा मंग ये शेख साहबी मंगदा है गुलिस्तान का बोल है कि सिफला खुदा बंद हस्ती मबाश जो कमीन बंदा है जो किरपन बनता है जो होछा बनता है इन कदी चोटी का